0: Veterans Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
1: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
2: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स सबके लिए कुछ न कुछ है 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS पर चाहे डाइन इन करो टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ कॉल कीजिए 0116-332-5100 एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
3: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
4: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Sounding good throughout the night.

0: है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: Travel at all protected.
3: Less Than Mela is back.
4: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
3: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
4: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
3: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
4: Arts Council England.
5: Did you know you can advertise on this station, Lyco Radio Midlands, plus our other offerings, Lyco Radio Greater London, Lyco Gold Greater London, and Lyco Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@lycomedia.co.uk.
6: Sounding good throughout the night
5: with the biggest soothers. It's your Lyco Radio.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती सनबंध।

तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

पुरख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भाव है साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए अखरी नाम।

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापे जाए, धर्म

0: back-to-back hits across the Leica Radio network.
1: Leica Radio.
0: Traffic and travel.
2: I'm Greg Edwards. Traffic's on move around Aston and around Belgrave this morning, looking at the sensors. Roadworks underway still in Derby. The eastbound side of Burton Road is closed from the A5111 junction through to Whittaker Gardens while they work on the gas main, so there is a diversion to follow there. If you're heading out onto the motorways, traffic's fine so far on the M1 southbound through the ongoing roadworks just by Leicester Forest East Services. There's a lane closure still in place for several more months there. And looking okay so far if you're using the M69, the M6 in the area, or the M40 this morning. And that's your latest traffic and travel.
0: Ye hai Leica Radio.
3: Leica Radio.
4: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colours TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV.
5: Khatron Ke Khiladi.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
8: Europe or UK के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
9: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
10: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a 3-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
12: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
13: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
0: Punjab, the biggest tunes.

0: at the Golgapenda Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
3: दिल तो टूट भी गया,
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
5: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: New hits on Leica Radio.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
0: Back to back hits across the Leica Radio Network.

0: Good morning. स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के गोल्डन सॉन्ग से लेकर मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ। बहनों भाइयों की जिस प्रकार मेरा प्यार और मोहब्बत भरा नमस्कार। बृहस्पतिवार जुलाई महीने की 30 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का भाई 10:05 हुआ चाहते हैं ब्रिटिश घड़ियों में। अब से लेकर दोपहर बाद 1 तक सुनिए मीठे मीठे गीत, लेकिन भाई आज मिठास में थोड़ा दर्द भी शामिल रहेगा कुछ एक गीतों में, क्योंकि हमारे श्रोताओं को रहता है इंतजार जिंदगी के सारे अच्छे बुरे मीठे कड़वे अनुभव भाई पिरो करके गीतों में पेश किए जाएं। तो ठीक है, लोग कह रहे हैं कि सावन शुरू हो गया है। हाँ भाई, सावन का महीना पवन करे शोर, लेकिन वो सावन जिसमें वो बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और बूंदाबांदी और तेज बौछारें, वो वाला सावन दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो धूप है, चमक है, गर्माहट है, वो वाला सावन इंतजार तो उसका ही है। और एक सावन वो भी भाई, ऐसो पापी सावन आयो, सावन आग लगाए रे, जिस सावन में मिले पिया जी वो सावन कब आए रे।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Are you listening? Leica Radio is now available across Coventry on DAB.
0: तो साहब कल पूर्णमासी थी और मास पूर्ण हुआ तो नए मास का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन भाई हमारी व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि महाराष्ट्र में गुजरात में जो है वो श्रावण शुक्ल पक्ष से शुरू होता है यानी 15 बाद, और उत्तर भारत में यानी पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा तो इन राज्यों में श्रावण मास आज से शुरू हो रहा है। अब भाई आप जैसे मर्जी कर लें, 15 बाद शुरू करें या आज से शुरू करें, क्योंकि पूर्णमासी कल थी तो कृष्ण पक्ष का पहला दिन यानी श्रावण का पहला दिन है, और श्रावण से जुड़ी हैं बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे पूजा पाठ। तो साहब हम तो शुरू करते हैं आज से सावन का महीना।

0: हेमलता की आवाज सुन रहे थे आप इस गीत में। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया, जो प्रोग्राम का पहला गीत था, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म नहले पे दहला। किशोर कुमार और लता जी ने स्वर दिया था उस गीत को। सावन का महीना आ गया, घोषणा हो गई, लेकिन देखते हैं भाई सचमुच मौसम में सावन कब आता है। सपनों के गांव में सावन आया है, अभी तो रियलिटी में कब आता है इंतजार है। इस सप्ताह तो कहते हैं भाई गर्मी पड़ने वाली है, पड़ रही है। आज थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, लेकिन जब बादल आएंगे और भाई छाएंगे और बारिश करेंगे तो ठंडी बौछारें लाएंगे। दो गीत बैक टू बैक सुनवाते हुए हम पहुंच जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जानने के लिए कि आज क्या रेट चल रहा है पाउंड का।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India आज का रेट बता रहे हैं और कहते हैं भाई पैसे क्यों नहीं भिजवा रहे हैं, अच्छा रेट है। देखिए एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग 127.35 इंडियन रुपीज, 127 रुपए और 35 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: ये है
1: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN. Location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: Is about to explode. Confirmed artist
8: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
7: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
8: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
7: Arts Council England.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
11: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग,
7: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी।
11: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and Paris City Tour.
7: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
11: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
13: LemFi means quicker and safe way to send money.
14: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
13: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
14: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
15: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
16: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
17: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
18: Four beers, please, garçon!
17: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
16: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: लीजिए साहब, बात तो सावन की की हमने प्रोग्राम के शुरू में, लेकिन सावन का एहसास नहीं हुआ. सावन हमारे पास नहीं हुआ. भाई सावन में मोर नाचता है, कोयल कूकती है, पपीहा आवाज लगाता है आकाश की ओर देखकर, इंतजार करता है उस बूंद का जो स्वाति नक्षत्र में गिरती है. लेकिन साहब सावन में वियोग भी होता है, मन का रोग भी होता है, दर्द भी होता है, यादें भी होती हैं.

0: आपको मेरे लिए फुर्सत कभी मिल पाएगी? जिंदगी क्या आजकल करते हुए कट जाएगी? आपकी ख्वाहिश से पहले काश हम ये जानते कि आरजू ये आपकी इतना हमें तड़पाएगी। तेरे बिन सावन कैसे बीता तू क्या जाने बालमा। जब याद किसी की आती है, 1967 में आई थी फिल्म, धर्मेंद्र और माला सिन्हा थे शायद इसमें। भाई गीत बहुत हिट थे इस फिल्म के, उनमें से एक हमने आपको सुनवाया, वियोगी गीत। और सुनवाया किसने पहुंचाया?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा। like a radio.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। भारत की पार्लियामेंट में पेपर लीक रोकने से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। आपको बता दें भाई, बिल को दोनों सदनों में पास होना होता है, लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में परीक्षाओं से पेपर लीक को रोकने से जुड़ा विधेयक पेश किया गया। बिल पेश करते हुए राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एंटी पेपर लीक बिल देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता है। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम की जर्सी का रंग केसरिया करने पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बेल्जियम में होने वाले FIH वर्ल्ड कप में अपनी पारंपरिक नीली जर्सी के बजाय केसरिया रंग की जर्सी में खेलती नजर आएंगी भारतीय महिलाएं। पूर्व कप्तान वीरेंद्र रसकिना ने इस बदलाव पर सवाल उठाए हैं, जबकि हॉकी इंडिया ने इसे टेक्निकल जरूरत बताते हुए बचाव किया है। भाई हर रंग में हर बात में वो धर्म की दखल अंदाजी ढूंढने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो फिर ऑब्जेक्शन करते हैं। भारत में बांकीपुर उपचुनाव में यानी बाई इलेक्शन में वोटिंग चल रही है। आज पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी है। सुबह 10 बजे वहां सिर्फ 5% ही वोटिंग हुई थी। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने से खाली हुई है। अब वहां पर ये बाई इलेक्शन हो रहा है। करीब 3 दिन तक चले गतिरोध के बाद, रुकावटों के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऐदल सिंह कंसाना ने मूंग की 60% तक खरीद की घोषणा की है और इसके साथ ही सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। इंटरनेशनल खबरों में अमेरिकी फौज ने दावा किया है कि उसने मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों पर ईरान की ओर से किए गए अचानक हमले के जवाब में ईरान पर अटैक शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि ये हमले मंगलवार को जॉर्डन में अमेरिकी फौजी ठिकानों और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर ईरान की ओर से की गई गोलीबारी का करारा जवाब है। कोविड के दौरान अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर रहे फाउची ने संसद में सवालों के जवाब पर चुप्पी साध ली है। कोविड महामारी के दौरान अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची थे। उन्होंने अमेरिकी सीनेट की एक सुनवाई में सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि रिपब्लिकन उनके बयान का इस्तेमाल उनके खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए कर सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर चरमपंथी हमला हुआ है। DSP समेत 9 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में हांगू के खजीना चेक पोस्ट पर हुए अटैक और जवाबी हमले में 1 DSP समेत 9 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई है। पता चला है कि इस मुठभेड़ में पुलिस ने भी 15 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बयान के मुताबिक बुधवार को हुए हमले और उसके जवाब में चलाए गए अभियान में DSP दियार खान समेत 9 पुलिस वाले मारे गए हैं और DSP मुजाहिद हुसैन समेत 28 पुलिस वाले जख्मी भी हो गए हैं। फ्रांस और स्पेन के बाद ग्रीस के जंगलों में भी अब आग लगी है, धधकी है आग। दो दमकल कर्मियों यानी फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मौत हो गई है। ग्रीस के क्रीट आइलैंड के रेथिम्नो इलाके में लगी जंगल की आग से जूझते हुए दो कर्मचारियों की मौत हुई है। ये दोनों आग में फंस गए थे। तेज रफ्तार हवाओं ने आग की लपटों को और भड़का दिया है, जिसके बाद कई गांवों को खाली कराया गया है। साउथ यूरोप में गर्मियों के दौरान जंगलों में आग लगने की ये एक और बड़ी घटना है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल बुधवार सुबह ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक और गाली गलौज से भरी भाषा में धमकी दी। इससे पहले ईरान ने रात में अचानक जॉर्डन में अमेरिकी फौजियों पर मिसाइल हमला किया था। एक और खबर पाकिस्तान से। वहां रावलकोट मीरपुर में हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत की इस संगठन ने की है आलोचना। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के रावलकोट और मीरपुर में हुई कई वायलेंट झड़पों में रेंजर्स के एक जवान समेत दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यहां पाबंदी लगी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की ओर से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

लौट आइए संगीत की ओर। कुछ गीतों का मुखड़ा पूरे गीत को परिभाषित कर देता है। सुनते ही पता लग जाता है भाई इसमें आरडी बर्मन का स्वर है, आरडी बर्मन की धुन है, आरडी बर्मन का प्रभाव है इस गीत में। हालांकि आवाज रफी साहब की भी शामिल है इसमें। शोले, दैट्स द फिल्म, द गीत टेकन फ्रॉम।

हम भी यहीं और आप भी यहीं, नहीं जाना कहीं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। हैरी थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा मैसेज नहीं भेजते, आज भेजा आपने, वो भी मैंने मांग के मंगवाया है। मैंने कहा कि उस मैसेज का इंतजार है जो अभी तक नहीं आया है। हैरी कहा गया, हैरी कह रहे हैं कि ये गाना जो है शोले का नहीं शान का है, यही तो सुनना चाहता था भाई, मैं इंतजार कर रहा था कि कितना ध्यान से सुन रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच हैरी, कभी कभी मैसेज भेज दिया करें।

0: नरेंद्र पांचाल जी, थैंक यू. और हरिवदन जी, सो नाइस ऑफ यू. हैरी, मानसी, भरत, गंगाराम, जहर, विजय, मॉरिशस वाले और एक सटन वाले, सबका धन्यवाद.
1: ये है लाइका रेडियो. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel का पैगाम आपके नाम, भाई ध्यान से सुन लीजिए. Southall Travel कह रहे हैं कि जो FCDO द्वारा एक जारी की गई थी ना एडवाइजरी, they have lifted its advice against all but essential.

लौटाइए संगीत की ओर। बूझे पहेलियां। भैया पूछ रहे हैं कि मोर क्यों नाचता है, कोयल क्यों गाती है, पपीहा क्यों बोलता है। अरे साहब मुझसे पूछ के बोलता है क्या? आसमान में चांद क्यों निकलता है, बादल मीह क्यों बरसाते हैं? भाई अपनी मर्जी से करते हैं, मुझसे कोई सलाह मशवरा नहीं लेता है। पहेलियों का मजा लीजिए।

0: सबसे निराला मैपस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All मैपस्टर प्रोडक्ट्स आर नट फ्री एंड मेड इन कनाडा. नाउ अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एशियन ग्रोसरी स्टोर.
2: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to check my...
3: Hey, boy!
4: Coast Guard, we're stuck.
5: Okay, help's on its way.
4: Hold on, mate.
6: Shoes, tide, phone.
7: Back before dark, love. Okay.
8: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
9: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
10: ये है लाइका गोल्ड

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम की दूसरे भाग में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर चिंतन का समय हो गया है। लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों में भाई चिंतन हम 11 बजे की खबरों के बाद शामिल करते हैं। ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, वक्त हो गया है, वक्त हो गया है थॉट फॉर द डे का, आज का विचार। आज का चिंतन, और आज के चिंतन में हम शामिल करने जा रहे हैं हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर डॉक्टर जितेंद्र बख्शी का भेजा आलेख। डॉक्टर बख्शी लिखते हैं, पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी पड़ रही है ना, हमें उस माहौल की याद दिला रही है जब भारत में लोग छबील लगाते हैं, प्याऊ लगाते हैं। भाई गर्मी से पसीना बहाते किसान मजदूर या और मेहनत करने वाले लोग सड़क से गुजरते हुए जब रास्ते में कोई प्याऊ देखते हैं तो प्यास और भड़क उठती है, पानी पीने के लिए रुकते हैं। और कई लोग ऐसी छबील लगाते हैं भाई जो घड़े और रखे होते हैं और उनमें इतना ठंडा पानी होता है कि पी करके जैसे अमृत जैसी फीलिंग्स आती हैं, अमृत पान किया हो, जीवन मिल गया हो। ऐसे ही एक शहर में एक सेठ ने छबील लगाई थी और उस पर एक नौकर बिठा रखा था, एक लड़का जो आते जाते लोगों को पानी पिलाता था। रात को घड़े भर के रखे जाते, सुबह तक वो पानी इतना ठंडा हो चुका होता और जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती दोपहर में तो वहां से गुजरते हुए लोग, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, मजदूर, दूसरे लोग, लाइन लग जाती थी पानी पीने वालों की। सुबह से शाम तक वो लड़का मजदूरी करता वहां बैठता था, लेकिन दोपहर में करीब 1 बजे वो लड़का अपने घर खाना खाने जाता। उतनी देर सेठ खुद प्याऊ पर, छबील पर बैठता। वो बैठ तो जाता लेकिन पानी नहीं पिलाता था, बैठता इसलिए था कि भाई रखवाली हो जाए, कोई घड़े ना उठा ले जाए। सेठ बैठा था, लड़का रोटी खाने गया था, तभी पसीना बहाता एक रिक्शा वाला अपनी रिक्शा खड़ी करके आके कहने लगा, सेठ जी पानी पिला दो, बहुत गर्मी है, बहुत जोर से प्यास लगी है। सेठ ने कहा, वेट कर, ऐसे बह जा, बंदा गया रोटी खान, बंदा वापस आएगा तो पानी पिलाएगा। अब रिक्शा वाला भी इंतजार करने लगा। कड़ाके की धूप में जैसे आग बरस रही थी, वैसे भी वो रिक्शा चला के आया था, पसीने में नहा रहा था, गला सूख चुका था। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, सेठ जी प्लीज पानी पिला दीजिए, बहुत बुरी हालत है। सेठ चिल्लाया, ओ तनु सुनया नहीं, मैं क्या, बंदा रोटी खान गया है, बंदा वापस आएगा तो पानी पिलाएगा। रिक्शा वाला फिर इंतजार करने लगा, एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा था। एक बार फिर उसने थोड़े से अंतराल के बाद कहा, सेठ जी बड़ी मेहरबानी होगी, पानी पिला दीजिए, जान निकली जा रही है प्यास के मारे। अब तो सेठ और भी गुस्से में आ गया, वो एक बार कहता तेनू, बंदा वापस आएगा तो पानी पिलाएगा, बंदा रोटी खान गया। रिक्शा वाले ने कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही बंदा बन जाओ ना। आप ही बंदा बन के पानी पिला दो।
1: चिंतन चिंतन,
0: बंदा वही है जो बंदगी करे, सेवा भाव हो। पर कुछ लोग दिखावे के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन मन में अगर दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो भाव नहीं है, तो पुण्य लगेगा क्या। बंदगी जो करे वही बंदा है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे भीतर बंदगी का भाव भर दो, हमें बंदा बना के रखो। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र बख्शी।

0: आज का चिंतन, आज का विचार आप सुन रहे थे, आलेख डॉक्टर जितेंद्र बख्शी का भेजा हुआ था और जो गीत हमने साथ जोड़ा फिल्म हलचल से लिया गया था। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में ये गीत बहुत पसंद आया हमारे श्रोताओं को, आज का विचार भी बहुत भाया। निशा कहती ये तो बताया नहीं आपने कि सेठ बंदा बना के नहीं बना। भाई कोई बात जाकर दिल पर लगती है तो व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, सेठ बंदा बन गया। उसके बाद तो वो एक घंटे से भी ज्यादा समय बैठने लगा और लड़के को कहता कि आप आराम से रोटी खा के आओ, जब तक आप वापस आओगे मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को अपने हाथ से पानी पिलाना। भाई प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद में अमृत पिलाने का क्या फायदा। आप सोचते होंगे वो गीत भी चल सकता था आज के चिंतन के साथ, लेकिन ये गीत बहुत दिनों से नहीं सुना था, पर इस गीत को प्रोग्राम में शामिल करने का एक कारण ये भी था ना भाइयों कि इसमें सोनू निगम की आवाज शामिल थी और सोनू हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दुलारे सोनू आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भाई आज सोनू का 53वां जन्मदिन है, बधाई हो। कहते एक वो जमाना था जब बड़े बड़े गायक कलाकार इस दुनिया से विदा हो गए और लग रहा था कि इस खाली जगह को कौन भरेगा। संगीत प्रेमी बड़े निराश हो गए थे। वैसे उदित नारायण और भाई कुमार सानू और बहुत सारे गायक कलाकार आ गए थे, लेकिन सोनू निगम ने संघर्ष करके अपनी जगह बनाई। सच में बहुत सुरीले गायक हैं सोनू, सुरेश वाडकर भी, लेकिन सोनू तो ऐसे आए के फिर छाए। और कहते हैं कि भाई सोनू निगम रफी साहब के दीवाने थे, उनके गाने गाते थे। शुरू शुरू में तो इस नौजवान को ऐसे ऐसे दर्द भरे गाने गाने पड़े। भाई कहते हैं कि यंग लड़का रोने पीटने वाले गाने गा रहा था। लेकिन बाद में जैसे गीत डिजर्व करते थे सोनू इन्हें मिले, बाजार में इनका सम्मान भी बढ़ा और इनके दाम भी बढ़े। सोनू भाई के साथ स्टेज साझा करने का मौका मिला था मुझे भारत में, और वो भी बड़ा सरप्राइज था। आपको बता दूं कि सोनू हरियाणा से हैं, फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था, और इसलिए भाई हरियाणा सरकार ने सभी दुनिया भर में कहीं भी कोई ऐसे हरियाणवी स्थापित हुआ है तो जिसने नाम कमाया उन्हें बुला करके सम्मानित किया। महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री रहे थे, वो भी आए हुए थे और सबको एक ही होटल में ठहराया गया था, लेकिन सोनू निगम के बारे में मुझे सूचना नहीं थी कि वो भी आए हुए हैं। गुड़गांव में कार्यक्रम हो रहा था और मैं ही स्टेज संभाले हुए था, तो साहब मुझे कान में मैसेज आया, वो जो ईयरफोन लगा होता है, कि सोनू निगम आ रहे हैं सामने से, आप उन्हें इंट्रोड्यूस कराइए और उन्हें मंच पर माइक्रोफोन दीजिए। अब भाई स्टेज संभालते हुए कई परिवर्तन जो है ना मंच पर हमें इमीडिएटली करने होते हैं। मैंने देखा बीच में से स्टेज में जो स्टेज की तरफ पब्लिक में से आइल में चल करके आ रहे थे सोनू निगम, तो मैंने उनके बारे में बोलना शुरू किया, तालियां बजवाई, जोरदार स्वागत हुआ। और जब सोनू स्टेज पर आ गए तो माइक मैंने उन्हें दे दिया कि कुछ कहेंगे। अब ये शेड्यूल में नहीं था, सोनू ने माइक लिया, थोड़ा सा गुनगुनाए और फिर मेरे पास आए, कहने लगे लगते तो आप रवि शर्मा हैं लेकिन पहले से ज्यादा जवान हो गए हैं। पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। भाई गले मिले वो एहसास बहुत खूबसूरत था। सोनू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ईश्वर आपकी लंबी आयु करे। अब भाई वो जो इंसिडेंट था ना स्टेज का गुड़गांव में, वो वीडियो पर रिकॉर्ड किया किसी ने और मुझे पहुंचाया, तो मैंने संभाल के रखा है। आज सोचता था बजाऊं सोनू की आवाज सुनवाऊं, लेकिन वो मिला ही नहीं। कोई चीज संभाल के रखने की आदत ही नहीं है रवि शर्मा को। खैर साहब सोनू निगम दिलों में बसते हैं, उनकी आवाज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी आवाज सर्वव्यापक है, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र। थैंक यू। आज का चिंतन, आज का विचार, डॉक्टर जितेंद्र बख्शी का आलेख, हलचल फिल्म का गीत, सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें, बंदों पे अपने ऐदाता इतना टूपकार कर। चिंतन को समेटते हुए याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद कार्यक्रम में मनोरंजन में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding, if you want to send money to your family members, friends, this is the right time because rate is very good. Hai ke 1 pound ke badle they are giving 127.35 rupees and that's maximum. 127 rupees aur 35 paise mil rahe hain 1 pound ke badle. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah. Like our radio.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786028065. Exclusive radio partner, Laika Radio.
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
8: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
7: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
9: Kya aap nurse, physiotherapist, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
11: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day. We're at our peak.
12: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
11: Southall Travel.
12: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
11: Southall Travel can take you there.
13: Southall Travel, Auto Protected.
14: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
15: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with peppalicious flavour. Birmingham, come and get it.
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
17: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
16: High appreciation.
17: In Dubai.
18: It was just another day. A familiar drive. Through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
19: On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja discusses reinvention and entrepreneurship with Meenal from Samaria Global Finance Limited.
20: Nowadays, it's getting more and more challenging because the banks, all the bigger financial institutions, all the lenders, all the investors, they have so many people approaching them on a day-to-day basis. So they need someone who can actually hit the ground running for them.
19: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
21: Leica Radio.
19: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
22: The one and only one, Ravi Sharma, on your number one radio.

0: बैक टू बैक संगीत आपने एंजॉय किया। और भाई अब बता दें आपको कि प्रोग्राम का ये दूसरा घंटा चल रहा है, हमारी आपकी मुलाकात दोपहर बाद 1 बजे तक जारी रहेगी। एक और व्यक्ति तो भाई चर्चा में है, शेख हसीना, आप भूले तो नहीं होंगे, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पिछले 2 बरस से भारत में है, लेकिन अब सुनने में आया है कि वो अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बांग्लादेश लौटने और अदालत के सामने सरेंडर करने की इच्छा जता रही हैं। उनका इस तरह का जब बयान आया तो बांग्लादेश और भारत दोनों में हलचल पैदा हो गई है। क्या सचमुच शेख हसीना बांग्लादेश लौटना चाहती हैं? भाई वो आपको याद होगा कि जब आंदोलन जोर पकड़ रहा था वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके और भारत आ गई थी। भारत के गृह मंत्रालय से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई ना तो हमने शेख हसीना को इनवाइट किया था, ना ही हम उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं, वो भारत में जब तक चाहें रह सकती हैं, रह रही हैं, जब वो जाना चाहें जा सकती हैं। शेख हसीना शायद अपनी पार्टी को फिर से एकजुट करके और भाई राजनीति में अपना जो है वर्चस्व वापस हासिल करने के लिए लौटना चाहती हैं। और उन्होंने जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये फैसला अगर लिया है, घर लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है ये भी वो जानती हैं, और यहाँ तक कि सजाए मौत भी दी जा सकती है। भाई वो तो डिपेंड करता है हालात पर उस समय के, लेकिन वो अगर ऐसा फैसला ले रही हैं तो क्या वो अपने फैसले को कार्य रूप दे पाएंगी, देंगी? और बांग्लादेश अगर वो लौटती हैं तो भारत का इसमें क्या फायदा या नुकसान होगा, वाले इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। खैर ये एक खबर है कि शेख हसीना ने इच्छा जाहिर की है कि वो वापस अपने वतन लौटकर अपनी पार्टी को फिर से संगठित करें। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम गीत संगीत सूचनाएं समाचार, और भाई ये जानकारी भी।
1: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।
0: एक और सूचना आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, और वो सूचना ये है कि लाइका रेडियो नेटवर्क बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ भाई जुड़ा हुआ है, और एक और ये खबर आप तक हम पहुंचा दें कि सेलिब्रेट इंडिया इंडिपेंडेंस डे विद सनातन इवेंट्स, एंजॉय 20% ऑफ टिकट्स टू दिवाली स्टोरी अंटिल 15th of August। आप जानते हैं 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है, और दिवाली स्टोरी वाले उस दिन तक 15 अगस्त तक ये स्पेशल छूट दे रहे हैं टिकटों में। सनातन इवेंट्स की जो दिवाली स्टोरी है उसकी टिकटों पर 20% की रियायत दी जा रही है। यूज द कोड LAIKA20, याद रखिएगा LAIKA20 कोड का इस्तेमाल करके आप 20% रियायत ले सकते हैं अंडर द प्रोमोशन कोड एट diwalistory.com। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क दिवाली स्टोरी के।
1: लाइका रेडियो फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Extra Podcast Update.
4: भाई अपडेट में आपको बता दें कि पॉडकास्ट का नया एपिसोड नंबर 2 इज अवेलेबल भाई। आप की इसमें मुलाकात है मिलल सामरे के साथ, भाई बातचीत करते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल टॉपिक, बहुत सारी ऐसी जानकारी, फायदेमंद हो सकती है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
3: Leica Extra. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.

0: और सॉन्ग भाई दर्द की अभिव्यक्ति करता हुआ, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। कौन सी फिल्म का, किशोर दा ने किस हीरो के लिए गाया था ये गीत जो दर्द की अभिव्यक्ति करता है? राजेश खन्ना, अपने जमाने के भाई मेगा स्टार थे राजेश खन्ना। जितनी ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ उस समय तक वो मेगा स्टार थे, उसके बाद तो उनके साथ ही काम करने वाले एक और सितारे उन्हें पीछे छोड़ के आगे निकल गए, अमिताभ बच्चन। उनके साथ कौन सी फिल्म थी वो पता नहीं, वो जिसमें ये दोनों एक साथ नजर आए थे, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, नमक हलाल या नमक हराम समथिंग भाई। उसके बाद अमिताभ बच्चन तो उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां तक शायद ही कोई और अभिनेता पहुंच पाए, लेकिन राजेश खन्ना अपने दौर में, मुझे याद है राजेश खन्ना की शादी हुई जब डिम्पल कपाड़िया के साथ, तो उनकी वो जो रील बनी थी उस समय वो बीबीसी पर दिखाई गई थी। लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन भी ऐसे छाए कि जब उन्हें चोट लगी तो उनकी हेल्थ बुलेटिन यहाँ बीबीसी पर ब्रॉडकास्ट हुआ करती थी, हम देखते थे। तो साहब हर सितारे का अपना एक समय होता है। हास्य अभिनेताओं में आप देखिए, किसी जमाने में जॉनी वॉकर का बोलबाला होता था, फिर महमूद आए और छाए, फिर महमूद के बाद असरानी, और ऐसे एक एक करके ना जॉनी लीवर अपनी जगह बना करके भाई टिके रहे काफी देर तक। आजकल राजपाल यादव चर्चा में थे पर वो फिल्मी पर्दे पर कम और जेल की सलाखों के पीछे ज्यादा समय आजकल गुजार रहे हैं, हमें उनसे हमदर्दी है भाई। लेकिन कुछ ना कुछ विवाद भी इन सितारों की जिंदगी में उठते रहते हैं भाई, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। दो गीत हमने परोसे आपको, ये प्रोग्राम का तीसरा और अंतिम दौर शुरू हो चुका है। माय नेम इज रवि शर्मा और मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूँ, 12:15 हैं। लेट मी रिमाइंड यू द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज प्रॉमिस टुडेज रेट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI, yani State Bank of India, UK, reminding that rate is good. You want to send money to your friends, family members in India? Well, today's rate is 127.35 for £1. 127.35 का रेट है। आप ट्रांसफर कर सकते हैं वाया ब्रांच, किसी भी ब्रांच में जाके, या फिर ऑनलाइन, और यू कैन यूज द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
6: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 749. Leela Medium Atta 10kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box, 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5kg for 3.99. Mido Yogurt 10kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN.
7: Leicester Miller is back.
8: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
7: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
8: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
11: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot Potato Shop, now at Foss Park.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: Weddings, celebrations, corporate events. At Rugasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit rugasan.com to begin your journey. Rugasan, locate, design, manage, cater.
15: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
16: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast. Make the call. Dial 999.
17: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
18: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Aur bhaino bhaiyo, इस सप्ताह के कलाकार का नाम आप सुन चुके हैं, उनकी आवाज में कई गीत भी गूंजते रहे हैं हमारे स्टूडियो से. यस, द आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज यसुदास.

0: यशुदास। कलाकारों की, गायक कलाकारों की भीड़ में एक आवाज बिल्कुल हटकर, सबसे कटकर, और भाई इतना सुरीला स्वर इनका सुनकर मजा आ गया होगा हमारे श्रोताओं को। ये गीत याद दिला रहा है आने वाले त्योहार की, जन्माष्टमी। भाई भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से यहाँ यूके में भी मनाया जाता है और यूरोप में, और भारत में तो इसकी धूम मचती ही है। जन्मदिन मनाने वाले का आज अगर जिक्र करें तो सोनू निगम अपना जन्मदिन मना रहे हैं। केटला बरस न थी गाचे दीकरा, मने खबर न थी, माइंड योर बिजनेस। झगड़ा कराएंगे आप भाई, जितने का भी यंग है बहुत। 30 जुलाई 1973 में फरीदाबाद हरियाणा में उनका जन्म हुआ था, और बहुत प्यारे इंसान है। आपको बताऊं सोनू निगम, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हिम। उनके अलावा भाई आज मंदाकिनी भी अपना जन्मदिन मना रही हैं। मंदाकिनी वो मेरठ में जन्मी थी 1969 में, बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन वो ग्रीन आंखों वाली बड़ी खूबसूरत अभिनेत्री छा गई थी। कौन सी फिल्म में आई थी, राम तेरी गंगा मैली में, भाई वो भी आज ही के दिन जन्मी थी मेरठ में। सोनू सूद पंजाब में जन्मे थे 1973 में। मजे की बात है कि दोनों सोनू, सोनू निगम और सोनू सूद, दोनों 30 जुलाई 1973 में जन्मे थे, और दोनों जो है इक्वली वो एक गायक कलाकार हैं, तो ये एक्टर भी हैं लेकिन चैरिटी कार्यों के लिए बहुत नाम है इनका। और भाई इसके अलावा एक और अभिनेत्री आज जन्मी थी, बाली भाई, उनके बारे में लेकर आएंगे बहुत सारी जानकारी। याद होगा आपको सुलोचना, सुलोचना लाटकर, वो माँ के रोल में और भाई कैरेक्टर रोल्स में बहुत नजर आई फिल्मों में, उनका भी आज जन्मदिन पड़ता। 1928 में जन्मी थी ये सुलोचना जी। और भाई आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन रहा हो तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लौट आइए फिर से संगीत की ओर, जिन्हें इंतजार है दर्द भरे गीतों का, तो भाई इस गीत में दर्द भी है, आंसू भी हैं, और है लंबा
1: फील गुड ट्रैक
0: इंतजार।
1: ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरी वैली.net।

0: मेरा।
1: मानसी आपको पसंद आया ये गीत? भारती कहती है अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग, इमोशनल। भाई ये जिसको जो गीत पसंद आया अपने नाम कर लीजिएगा।
2: Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: और अब कुछ एक सूचना। एक तो ये आपको याद दिला दूं कि दिवाली स्टोरी जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द स्टेज म्यूजिकल दिवाली स्टोरी जो है, इसके हम मीडिया पार्टनर्स हैं। टेकिंग प्लेस एट द ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे 27 सितंबर। विजिट AXS वेम्बली फॉर टिकट्स। और मेला Well, Laika Radio is also exclusive radio partner of Leicester Mela again on 15th and 16th of August at Abbey Park. Also the Bradford City Mela on 1st and 2nd August at City Park and Centenary Square. तो भाई ये सारे बहुत सारे आयोजन ऐसे आ रहे हैं जिनमें Laika Radio जो है वो पार्टनर है। भाई हम उसका हिस्सा बन करके नजर आएंगे, चाहे वो मिडलैंड में हो, क्योंकि मिडलैंड में भी हम हैं, मैनचेस्टर में भी हम हैं, और कितने हमारे स्टेशन हैं। तो हम जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में ये आयोजन हो रहे हैं, जैसे कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें भी हमारी भागीदारी है, और दिवाली स्टोरी में मेला में, तो भाई बस सुनते रहिएगा हमारे कार्यक्रम, कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होगी।
2: This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

वो रूठी है मनाने का नहीं, और वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। भैया सही समय पे बुलाए, सही ठिकाने पे बुलाए तो बंदा जाने का विचार बनाए। अब ये कोई बुलाना हुआ कहाँ, कितने बजे, कैसे?

0: कृष्णा जी कहती आज सोनू निगम का ही जन्मदिन नहीं है, मेरा बेटा समीर भी आज के दिन जन्मा था। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई, सोनू सूद, सोनू निगम और आपका बेटा समीर और भाई और भी बहुत से लोग जो आज जन्मे हैं, जन्मदिन की बधाई स्वीकार करें। हैप्पी बर्थडे।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथहोल ट्रैवल।
0: साउथहोल ट्रैवल वालों का संदेश आपके नाम याद दिला रहे हैं, भूले तो नहीं है ना आप कि साउथहोल ट्रैवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई। कॉल साउथहोल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208574 8410। दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Listen to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. This is Laika Radio, part of the Laika Radio Network. Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
1: प्रिजे साहब टेस्टी ट्रैक सुनिए, मतलब गीत तो सारे वो नमक मिर्च वाले सुनवा रहे हो, तीखे सुनवा रहे हो, दर्द भरे, आंसुओं भरे शिकायतें हैं, भड़ास निकाल रहे हो क्या कोई पुरानी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जुदाई के वियोग के साथ साथ संयोग वाले गीत भी हैं हमारे पास।

0: कल आने के लिए आज जाना होगा, पर बाली भाई कहते हैं कि स्टूडियो छोड़ने से पहले शेर सुनाना होगा। ठीक है साहब, मुंतजिर हो रास्ते में वक्त आमद हर सुबह, और जब जाने लगे तो रास्ता रोके कोई। हमसे इन छोटी मुलाकातों का झगड़ा किस लिए है, अगर हिम्मत तो समय की चाल को रोके कोई।
1: वाह वाह,
0: क्या बात है। बाली भाई के हवाले स्टूडियो, अगली मुलाकात तक के लिए अनुमति दीजिए। बाय बाय, हैव अ सुपर्ब डे।

0: Gold afternoon to you. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट on Like a Gold with Gold Afternoons sponsored by Jaimin Foods. Available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home and LikeAGold.com. Now also available on a radio player app. And it's the 387th day of Leica Radio Midlands. मैं तीन घंटा, that's 3 hours, I shall be with you doing a couple of tributes. Tributes, of course, ये तो आपने गाना सुनकर सोच ही लिया होगा, क्योंकि रवि भाई ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया भी था इस मोस्ट सक्सेसफुल सिंगर के बारे में. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. एक दूसरी भी सूचना है कि लवली बर्थडे ऑफ दैट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वंस अपॉन अ टाइम जिनको कहा जाता था कि शी इज काइंड ऑफ अ सेक्स सिंबल एंड दैट इज मंदाकिनी, उनकी भी बर्थडे है. तो उनके बारे में सेकेंड आवर में हम बात करेंगे. और इस आवर में 1 to 4 इट्स मी बाली ब्रह्मभट्ट एंड 4 to 7 आज सैंडी शाह अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएंगे. मैं जल्दी आपको बताता हूँ हु इज गोइंग टू कम. मोस्ट प्रॉबली इज गोइंग टू बी वीर, यस. एंड on Leica Radio Midlands, it's going to be the winning show of Raj Patan on Leica Radio Midlands from 4 to 7. Unka saath dijiyega. And main 4 baje tak aapke saath hoon. Abhi the most successful singer, jaise maine kaha, who was born in Faridabad, Haryana, on 30th of July 1973. His wife, Madhuri Ma. Yes. इनका बेटा है निवान. ही इज अमेजिंग. ही इज ग्रोइंग अप एज सच अ ब्यूटिफुल यंग बॉय एंड ही इज गोइंग टू क्रिएट अ नेम एज अ सिंगर हिमसेल्फ. ही इज शोइंग साइंस ऑफ इट, लेकिन एजुकेशन सबसे पहले. दैट्स व्हाट सोनू निगम सेज, यू एजुकेट योरसेल्फ फर्स्ट, उसके बाद यू गेट इनटू सिंगिंग. इनके पिताजी अगम कुमार, यस मम शोभा जी, शोभा गढ़वाल एंड सिस्टर्स तीशा एंड मीनल. नाउ सोनू निगम के बारे में मैं अगर बताता और पूरा 2 hours मैं उसका ट्रिब्यूट करता, क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे भाई जैसा है. वी ग्रू अप इन द इंडस्ट्री टुगेदर बट ही वेंट वे अहेड, स्काई रॉकेट की तरह स्काई में चला गया. And he is so famous. He did not have commercial Bollywood playback hit songs in the 1980s as he started his career as a child artist performing stage shows with his father, and only moved to Mumbai in 1990 to begin his professional playback singing career. So main ek hi gana maine jo sunaya aapko wo hi suna sakta hu, aur aage dekhenge agar mauka mila तो मैं कुछ और गाने भी डाल सकता हूँ. बेवफा सनम का 1995 का गाना, दैट इज द बेस्ट सॉन्ग एवर. एंड मेरे साथ दोस्ती कैसे हुई वो बताने जाऊँगा तो शो निकल जाएगा यहाँ से. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बैकग्राउंड. बॉर्न इन 1973, ही बिगैन सिंगिंग ऑन स्टेज विद हिज फादर अगम कुमार निगम अराउंड द एज ऑफ 4. And he performed classical tracks and classic tracks, really. Sab Rafi saab ke gaane wo gaata rehta tha stage ke upar aur stage shows mein, wedding performances mein. Unke pitaji ke saath bhi wo gaane gaata tha aur mimicry bhi karta tha. And appeared briefly as a child actor in films like Pyara Dushman 1980 ki and Betab 1983. And rather than working as a playback singer, and then the transition to playback officially moved to Mumbai in 1990 to launch his professional career. Yes, breakthrough major hits. जैसे कि मैंने सुनाया आपको, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. और टी सीरीज ने बहुत ही अच्छा बैकिंग दिया इनको. एंड मेजर एल्बम्स दीवाना ओनली अराइव्ड लेटर इन द 1990s. उसके बाद तो इतने अच्छे अच्छे फिल्मी गाने मैं हूं ना जैसे गाने. And he is coming to town, I think, for a show. And he always has a house full. So, Sonu Nigam's birthday. Happy birthday, my dear brother.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.35 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.

0: मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: दिया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली,

0: What a beauty, eh? यही फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली. उसमें एक गाना जो था उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज देयर वर सम बोल्ड सीन्स ऑफ हर. बट देन यही लोग तो हिट करते हैं फिल्म को.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ji haan, jab Raj Kapoor ji ne unko naam diya tha Mandakini film Ram Teri Ganga Maili mein, aur usme there was a bit of a कॉन्ट्रोवर्सी और लोगों ने काफ़ी हंगामा मचा दिया था बिकॉज शी हैड कपल ऑफ पार्शियली न्यूड सीन्स इन टू सीक्वेंसेस इन राम तेरी गंगा मैली. वही पब्लिक तो है जो फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देती है, जो रोना धोना करते हैं, बाद में चिल्लाना करते हैं, लेकिन वही जाएंगे तीन तीन बार फिल्म देखने के लिए. और यहाँ चिल्लाते हैं लेकिन वहाँ पे फिल्म को ब्लॉकबस्टर हिट बना देते हैं. सो इट्स यू कैन से कम सा एंड टू वे इट वर्क्स, है ना.
1: लाइक अ रेडियो.
0: ओके, आई हैव गॉट सम गुड न्यूज फॉर यू हियर. यस, व्हाट इज द गुड न्यूज? यू बीन लिसनिंग टू us every day, enhancing a few points of what is happening on Laika radio network is being all over the place. That's right, Ragasan. Laika radio network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at laikaradio.com. ab dekha jaye to Kavita Krishnamurti ji bhi aa rahi hai, and it'll be full publicity by none other than Laika. Laika Radio Network is the exclusive radio partner of the stage musical Diwali Story, taking place at the OVO Arena, Wembley on Sunday, 27 September. Visit AXS or Wembley for tickets. And the Mela of 2026, Laika Radio's exclusive radio partner of Leicester Mela again on 15th and 16th of August at Abbey Park. Also the Bradford City Mela on 1st and 2nd of August. Yes, this weekend at City Park and Centenary Square. Laika is everywhere.
1: This is Laika Radio across the Midlands.
3: Ab hoga weekend aur bhi suhana. The Ritu Sharma Show mein every weekend 10 AM to 1 PM on Laika Gold Radio, Laika Radio Greater Manchester and Laika Radio Midlands par.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: And Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208 574 8410. At all protected.

0: ये कुमार सानू और साधना सरगम के साथ जो आवाज है मुकुल अग्रवाल, कितने खूबसूरत गाने इन्होंने गाए हैं मुकुल अग्रवाल के। कभी मौका मिला तो इनके बारे में मैं बताऊंगा और उनके गाने भी सुनाऊंगा। अंडर एस्टिमेटेड सिंगर, लेकिन व्हाट अ वंडरफुल वॉइस। फिल्म है हस्ती, 1992 की फिल्म। And a big hello to Veer Bhadar Singh in New Jersey.
1: London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network. This is Leica Gold across Greater London.
0: Thank you for your wonderful feedback, Veer Bhadar Singh of New Jersey. USA, इन्होंने अच्छा गाना भेजा मंदाकिनी का, तू लड़की नंबर वन है। अगर मौका मिला तो जरूर मैं सुनाऊंगा आपको ये गाना इन द नेक्स्ट आवर ऑफ कोर्स।

0: What a song, main hoon Bali Brahmbhatt on Laika Gold with Gold Afternoons. And jis shakhs ko main bulane wala hoon, he is one of the best singers in India. And of course, he has been singing for so many years and a voice that is so much in demand. UK mein wo naam sunte hi houseful ho jata hai. To main unko bulata hoon, none other than Debashish Das Gupta on, we can say, Laika Gold. Aur logo taaliyon se swagat karte unka. Debashish Das Gupta, aapka Laika Gold mein swagat hai.
1: Thank you so much, Bali. How are you?
0: I'm fine, thank you. And congratulations, aapka house full ho gaya.
1: No, thanks to God. Thank you.
0: Thank you so much. Kaisa lag raha hai mausam hamare UK ka?
1: Yeah, mausam to bahut garam tha jis din main aaya tha. But today at least little better.
0: A little better. हाँ जी हाँ जी yeah. तो अभी मैंने आपका गाना जो सुनाया रहने को घर नहीं, वो दो लाइन आप भी सुना दो ना लोगों को. लोग सोच रहे हैं कि कैसी आवाज होगी कैसी आवाज होगी, तो वही आवाज में आप सुना दो ना दो लाइन.
1: ये गाना हम लोग ने एक ही साथ गाया था ना.
0: हाँ
1: मैंने और सुमर शानू ने, मतलब
0: जी
1: बहुत फ्यू लाइन्स है जो हमारे अलग अलग डिवाइड हुए थे.
0: हाँ जी.
1: But maximum song is all together, हम लोग ने एक ही साथ गाया था.
0: हाँ तो दो लाइन सुना दो.
1: मेरा लाइन था
0: हाँ,
1: हम कभी नींद की गोलियां लेते नहीं, रखे पत्थर पे सर थक के सो जाते हैं. ये मेरा लाइन था. फिर रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला.
0: वाह वाह वाह.
1: अभी मैं भूल भी गया हूँ ये गाना.
0: वो तो होता ही है, सडनली कोई बोल देता है तो सोचना पड़ता है ना अल्फाज सब. वो तो क्योंकि हमेशा गाते हैं तो किताब सामने ही होती है तो सहारा मिल जाता है. लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ,
1: आर्टिस्ट आपने इतने सारे गाने गाए हम लोग के साथ, अभी हमने इतने सारे दिन गुजारे हैं, बाहर शो किया हमारे साथ.
0: हाँ जी
1: मैंने दोनों मिलकर.
0: हाँ जी.
1: सो यू नो एवरीथिंग है ना.
0: हाँ मैं विनोद राठौड़ के साथ बात कर रहा था लास्ट वीक एंड वो भी याद कर रहा था, बोले देवाशीष के साथ हमने 11 शोज किए थे अमेरिका में, जितेंद्र और नितिन मुकेश और राजेश रोशन ऑर्केस्ट्रा एंड संजय दत्त एंड श्रीदेवी के साथ, है ना. तो वो भी एक अच्छा जमाना था. आप बैकग्राउंड में
1: भी तो थे ना हमारे साथ, आप भी तो थे ना.
0: जी जी जी बहुत मजा आया था मुझे. अभी मुझे इतना बताइए, कल रफी साहब को याद हम कर रहे हैं, है ना. तो आप, देर इज नो बेटर सिंगर ऑफ द वॉइस ऑफ रफी मेरे ख्याल से देन यू.
1: आपका प्यार है मेरे लिए, बट ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो उसमें से मैं भी एक छोटा मोटा हूँ. और रफी साहब तो रफी साहब ही हैं, हम लोग खाली फॉलो कर सकते हैं, इससे ज्यादा उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है हमारे पास.
0: यू आर सो हम्बल, यू आर सो हम्बल.
1: इट्स वेरी ट्रुथ एंड ऑलवेज वी ट्राई कि रफी साहब को गाने के लिए इज अ वेरी वेरी नेसेसरी टू रियाज, अदरवाइज यू कांट सिंग. वेरी टफ सिंगर इन द वर्ल्ड आई थिंक.
0: यस ऑफकोर्स ये तो बात सही है. और मैं एक बात पूछना चाहता था कि सपोज मैं आपको एक सिचुएशन में खड़ा कर दूं कि आपको अभी अनाउंस करने वाले हैं और आप बैक स्टेज से आलाप लेते हुए आप स्टेज पे आएंगे रफी साहब का गाना गाते हुए, तो वो कौन सा गाना चुनेंगे आप जो आलाप लगाते हुए आप एंट्री मारेंगे स्टेज पे, कौन सा गाना होगा रफी साहब का.
1: अभी एक गाना थोड़ी है रवि साहब का कि मैं यही गाना चुनूंगा, आप मुझे फंसा रहे हो गाने के लिए, मैं जानता हूँ कि कौन सा गाना चुनेगा और गा के बताओ. राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
0: पकड़ लिया आपने.
1: तो बहुत सारे गाने हैं,
0: प्लीज सुना दो. मैं एक तो सुना दो.
1: इज नॉट इजी टू सिंग लाइक दैट,
0: आई नो दैट.
1: बहुत गाने हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं. और हम सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आज ये मूड की ऑडियंस है तो शायद ये गाना अच्छा रहेगा. इट्स नॉट नेसेसरी सेम सॉन्ग एवरी टाइम. आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू लिटिल डिफरेंट हाँ जी बहुत कम होते होंगे स्टेज पर, मैं उन गाने को भी कोशिश करता रहता हूँ।
0: अच्छा, जीने की राह। ओके जितेंद्र, आप उनके लिए बैकग्राउंड से गाते थे अमेरिका में,
1: तो वो कौन सा गाना था? गाते थे ना वो मस्त बहार होगा फिर आने से उसके आए बहार,
0: आने से उसके आए बहार। दो लाइन प्लीज। अभी अलापा वहां से,
1: आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा,
0: वाह
1: मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, ये जो आवाज कानों में गूंजती है ना, अब मैं इतना बेताब हूँ ऑफ हियरिंग यू व्हेन आई कम ओवर टू लेस्टर। एंड हु वुड यू गिव क्रेडिट फॉर द होल शो, किसने कमाल कर दिया?
1: मिस्टर डी वसंत बत्ता।
0: यस
1: मिस्टर बी, जो कि इज अ वेरी वेरी डिवोटेड अबाउट कोई भी शो होता है, एंड आई नो हिम 94 से मैं उनको जानता हूँ, सो I admire him.
0: Yes.
1: And I learned so many things, Mr. B. So, उनके वजह से ही मैंने इतना हिम्मत किया कि चलो इतने साल के बाद then I come again to Leicester.
0: And क्या रिस्पॉन्स दिया? लोग भूलते नहीं आपको, लोग भूले नहीं आपको, you know?
1: Yes. That's, I'm very lucky कि yes. दो वीक पहले उनका मैसेज आया कि देबू the house is packed now.
0: ये बात,
1: ये तो अच्छी बात है।
0: बहुत अच्छे,
1: थैंक यू।
0: तो सैटरडे को मिलते हैं अपन, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड म्यूजिक कौन कर रहा है?
1: म्यूजिक हमारे एक सिंगर है रेखा जी हमारे साथ।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: सारेगामा में आपने सुना ही होगा था अपना सजदा सिस्टर में।
0: हाँ, इनको मैं मिलता रहता हूँ लंदन में। हाँ जी, वीरू, वीरू वकानी और गीता। हाँ जी,
1: दिलीप भाई वीरू जी का, उनके भी कुछ म्यूजिशियंस हैं।
0: हाँ जी,
1: मैं नाम इतना कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट दे ऑल टुगेदर एंड दे आर वेरी गुड म्यूजिशियंस दे आर।
0: फैंटास्टिक, गुरु पूर्णिमा इवेंट, राइट, ग्रेट। अपने जो बाइबल है, जो गीता, शी इज इन अमेरिका एट द मोमेंट एंड फॉर अ गुरु पूर्णिमा इवेंट, सो शी विल बी ज्वाइनिंग आई गेस लेटर ऑन। बट ऑल द बेस्ट टू यू, एंड फ्रॉम आप लाइका गोल्ड के लिसनर्स को क्या कहना चाहोगे?
1: एंड थैंक यू सो मच अबाउट लाइका रेडियो कि आप मुझे सुन रहे हैं, और वो भी मेरे दोस्त के थ्रू, बाली के थ्रू, एंड एवरीबॉडी आई वांट टू विश द लाइका जो लिसनर हैं, थैंक यू सो मच।
0: लवली लवली, एंड मैं चाहूंगा कि लंदन जब आओ तो हमारे स्टूडियो में जरूर आना और हम कुछ महफिल जमाएंगे। ओके,
1: श्योर श्योर बाली,
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू देव आशीष दास गुप्ता, ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, कीप रॉकिंग ब्रदर,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
0: बाय बाय,
1: बाय बाय।
0: So that was Deb Ashish Das Gupta.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And of course, the rates that keep fluctuating, your £1 in British sterling can get you up to the latest rate being 127.55 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Leica Radio.
3: Gold Afternoons is sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
6: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor. playback singer Amantrika or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
7: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
1: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
2: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डू गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
3: अभी कॉल कीजिए 0116202122 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA
2: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
4: लाइक अ रेडियो नेटवर्क Broadcasting across the UK with Asian stations.
5: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
2: A Laika Radio Classic plays now.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू। बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90 सॉन्ग्स नॉन

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए
2: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया
3: दिल तो टूट पे किया
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार

0: मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
2: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: Next, Radio Wally's Roller Coaster with Radio Wally on Leica Radio Midlands. Raj Badden.

0: बाप रे बाप, प्यार के चक्कर में कहां से कहां घूम रही थी बिचारी। उसे क्या पता घर के आंगन में ही प्यार मिल गया। वही तो कहना है ना, गांव में ढिंडोरा और बगल में छोरा। Hey, my love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love
1: warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और देखो इस बिचारी को सजना मिल गया, शादी तय कर ली, सगाई का दिन भी आ चुका, सजना कितने रह गया? मंडे, what's wrong with you guys? Come on, get it together.
2: Or generally, are the quitting other late ones? Let me know your thoughts.

0: such beautiful track, isn't it? So many lovely, lovely messages saying, "Very Wally, आज आप पूरी कॉमेडी के मूड में हो ना? भाई मेरा मूड तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप जैसे मैसेजेस भेजोगे, उसके हिसाब से मैं अपना मूड बना लूंगी. माहौल तो एक साथ ही बनाते हैं ना हम लोग रात को, शाम को, रात को नहीं, अभी शाम है. अभी धूप दिख रहा है मतलब शाम है. But before we go on to शाम और धूप की debates, a very, very, very happy birthday to Azan, जो आज पूरे 17 साल के बर्थडे बना रहे हैं. Azan, wishing you a very, very, very happy birthday to you. 1 year before you officially become a full-blown legal adult. So in the next 12 months, fulfill all those childish dreams. And you know what? Have the best birthday ever. Demand cake, demand party bags, and make sure you put a special demand in to say Radio Wally needs a piece of cake as well. Happy birthday.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: It's time for everyone's favorite ride, the Radio Wally roller coaster.
3: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
4: Khatron Ke Khiladi.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट रागासन.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Turning the clock back to the 90s. 90s at night with Radio Wally.
2: Like a radio.
3: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
4: Khatron Ke Khiladi.
3: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?

0: listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. You can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Bollywood romantic hits throughout the night. This